सा साक्षी जटिया सागा पिसा जो लसुदा कानो ओपा ओपा जो लसुदा कानो का खाला लिखे मिस्ती गरियाली देख जाना बानो पालेप्सा स्ती नगा पिमास पालेप्सा स्ती नगा पिमास